अठवें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जिन्हां नूं बाला प्रीतम करके सिख संगतां याद कर दियां हन, जिन्हां दी याद विच कई जगह गुरुद्वारे बने हन। दिल्ली दे विच गुरुद्वारा बंगला साहब, जिस जगह हजारां संगतां रोजाना जाके अपना सीस चुकांदियां हन और नाल मथा टेकदियां होईयां, उन्हां दे मुंह तों अपने आप ही निकलदा है, श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तो आओ गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज का जीवन आपां सारे रल के विचार करिए। जीवन तो पहला भाई गुरदास जी की उचारी हुई पौड़ी, हर कृष्ण पयो अष्टम बलवीरा, आओ आपां सारे रल के इस शब्द की विचार करिए।

ठाकुर तिसे मुख नहीं मोड़ियो, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसे मुख नहीं मोड़ियो। सहज आनंद रखियो गृह पीतर, उठ

वैकुंठ सत्संगत प्राप्त है। पूछा कबीर जी नूं, कहे कबीर एक ही एकाए साध संगत वैकुंठ ही आए। वैकुंठ विच आ गए। सर्व वैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमख हार के गोंगा। बहुत सारिया मुक्तियां, बहुत सारे वैकुंठ उसनू प्राप्त होंगे जेडे साध संगत विच आके जे एक निमख भी गुण गा लैणगे ते ए सारे वैकुंठ उन्हां दे। इहदी कीमत बड़ी लिखी गई है। एक बार सारे फेर उच्ची आवाज नाल पढ़ियो, गूंज पा के।

सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, सलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच, दीप कपरदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस सुभास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना बिहंग की कटा कन को।

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू

असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार।

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उती माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया।

आखह पड़े करह बखियाण। आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तय गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव केते आखह आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

गावै तुहनो पौन पणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सला सवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से ईत नो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बीचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जीवत सिदी वड्याई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग दोयकार चलावह लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान, ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडान, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस,

अगम गोचर अलख पारा चिंता करो हमारी, जलथल महियल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे।

निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुयुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप।

दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उदकर्ख करा कर तारा पर जा तर तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरियालम।

0: प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसै,
1: प्रभु के सिमरन दुख चल न सै,
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरै,
1: प्रभु के सिमरन दुश्मन तरै,
0: प्रभु सिमरत कछु

और किसे स्थान से जुल्म दियां हनेरियां चुलियां ने पापां दे बदल छाए ने ओ समय इतिहास दा खूनी पत्रा बनदा गया। समय समय अनुसार अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा अपने वखरे वखरे रंगा राही किसे पीर फकीर जा दरवेश दे जामे विच प्रगट होके सारी कायनात दे दुखां दर्दां दा नाश करन लई आप सहाई हुंदे रहे। दुष्ट दमन दशमेश पिता ने उस समय अवतार तारिया जदों के गरीब मजलूमा दुखियां दी चीखो कार सुन वाला और रखा करन वाला धरती उत्ते होर कोई नहीं सी। पिता तो पुत्रा तक सारा सरबंस वतन कौम दे लेखे लाके गुप्त हनेरी रात नू माछी बाड़े दे बिया बान जंगलां विच टीम दा सराणा लाके चोजी प्रीतम लोकां भाणे ता रोड़ा उत्ते सुते हुए सन, पर असल विच दशम पिता सुते हुए नहीं सन। भला कदे औखियां घड़ियां विच वी कदे किसे नू रोड़ा उत्ते नींद आ सकती है, जदों के लुकाई दे दुखां नू किसे ने आप जान बुझ के सीने नाल लाया होवे। कलंगियां वाले दशम पिता उस वेले अखां मीटी शायद इस ख्याल विच मगन सन कि किस तरह जुल्म दियां जड़ां पुट के देश दे गलों गुलामी दा फंदा लाया जाए। लुकाई ले सब कुछ वार के करों बेकर होके जंगलों दा वासी होके रहना फिर सिद्क ना हारना कमाल। दुनिया दे इतिहास विच इस तो वड्डी कुर्बानी दी मिसाल

हे परमात्मा, मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने, गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री वाहिगुरु।